हमें भी ऐसे पीछे करना अच्छा नहीं लगता, हम भी कल्चर लौट हैं, इतने सालों से हिम्मत जुटा रहे हम आज बोल देते हैं पसंद हो तुम हमें, तुम डिसाइड कर लो क्या करना है।

स्वयं रेडियो हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन।